ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। तुर्की और पाकिस्तान ने अगस्त में तय पाने वाले अपने मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब में तेजी से फौजी दस्तों की तैनाती के लिए जरूरी इकदाम करने का फैसला किया है। तीनों ममालिक ने पीर को सऊदी दारुलहुकूमत रियाद में एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया। ये इजलास ऐसे वक्त में हुआ जब सऊदी अरब और पड़ोसी मुल्क यमन के हुकूमत मुखालिफ हौसी बागियों के दरमियान हमलों का तबादला जारी है। बाद में जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में हौसी बागियों का नाम लिए बगैर सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मुजम्मत की गई। बयान में कहा गया है कि तीनों ममालिक से फरीकी मुआहदे के मुताबिक अपने मुश्तरका दिफाई वादों पर अमल दरामद के लिए फौरी तौर पर पेशरफ्त करेंगे। बयान में ये भी कहा गया है कि वो सऊदी अरब में तय शुदा फौजी दस्तों और सलाहियतों की फराहमी के लिए ज़रूरी इकदाम करेंगे और उनकी तेज़ी से तैनाती यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के हामी उन्हें कैद से रिहा करने का मुतालबा करते हुए दारुलहुकूमत इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हजारों लोग इतवार के रोज सड़कों पर निकल आए, जहां पर खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की बुनियादी ताकत है। इमरान खान को 2022 में इख्तदार से बेदखल कर दिया गया था और अगले ही साल उन्हें बदनवानी और दीगर इल्जाम में जेल भेज दिया गया। उनके हामियों का कहना है कि इन इल्जाम का सबब सियासी था। खान की तीन बहनों को गुज़िश्ता माह अमनियामा कानून के तहत हिरासत में लिया गया। मुजाहिरीन उनकी रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। नेपाली हुकूमत ने चीन के साथ वाक़े अपने सरहदी इलाके में अगस्त में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने और अचानक आने वाले सैलाब की तबाही के बाद तलाश और बचाव के कामों को मुअत्तल करने का फैसला किया है। हुकूमत ने नागुजीर तलाश और बचाव की कोशिशों के अलावा फौज और पुलिस के एहलकारों पर मुश्तमिल कार्रवाइयों को रोकने के फैसले का ऐलान पीर को किया। हुकाम ने कहा कि आफत के 40 दिन बाद जिंदा बच जाने वालों को ढूंढ निकालने का इम्कान कम है। उन्होंने कहा कि अगर नई मालूमात सामने आईं तो कार्रवाइयां दोबारा शुरू की जाएंगी। 26 अगस्त को आने वाली आफत में नेपाल में 1455 अफराद हलाक और 5200 से ज्यादा लापता हुए। लापता होने वालों में 5 जापानी शहरी शामिल हैं। चीनी ज़राए इब्लाग ने खबर दी है कि सरहद की चीन की जानिब 43 अफराद हलाक हुए और 510 से ज्यादा अब भी लापता हैं। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। शुमाली कोरिया के हाथों अगवा शुदा जापानी शहरियों के अहल खाना ने वजीर आजम ताकायची सनाए पर जोर दिया है कि वो तमाम अगवियान को जल्द अज जल्द वापस लाने के लिए पुरजोर सिफारतकारी करें। और जापानी तफ्तीशकारों ने एक बैन अलावामी हैकिंग ग्रुप के एक मुश्तबा अहम रुकन को हिरासत में लिया है। इस ग्रुप पर दुनिया भर की कई कंपनियों के खिलाफ साइबर हमले करने का इल्जाम है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए NHK.JP/Urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 7 अक्टूबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। जापानी वैज्ञानिक सोआई केन्सो इस वर्ष के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के 2 विजेताओं में से एक हैं। उन्हें ये सम्मान असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटोकैटालिसिस की खोज के लिए दिया गया है। जापान के दक्षिणी प्रिफेक्चर ओकिनावा में हत्या और लूटपाट के संदेह में एक मरीन सैनिक की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी सेना को 48 घंटे के लिए सभी गतिविधियां रोकने और 1 महीने तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। अमेरिकी मरीन कोर के 20 वर्षीय लांस कॉर्पोरल डेविन जेकब बेलार्ड पर शनिवार को नाहा शहर के एक होटल में 39 वर्षीय स्थानीय महिला की हत्या कर उसका बटुआ और अन्य सामान लूटने का आरोप है। मरीन कोर के फुतेम्मा एयर स्टेशन में तैनात बेलार्ड को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। ओकिनावा क्षेत्र संयोजक और तृतीय मरीन अभियान बल के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन वॉटसन ने मंगलवार देर रात मानक और अनुशासन नोटिस जारी किया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने ओकिनावे में तैनात सभी अमरीकी सैन्य कर्मियों को बुधवार दोपहर 12 बजे से 48 घंटे के लिए यूनिट संचालन रोकने का निर्देश दिया। इस अवधि के दौरान निजी काम के लिए सैन्य अड्डे से बाहर जाना और मदिरा सेवन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त सेवा कर्मियों को शुक्रवार से शुरू होने वाले 30 दिनों तक मध्य रात्रि से सुबह 5 बजे तक घर पर रहना होगा। ओकिनावा के गवर्नर कोजा गेंता ने सोमवार को वॉटसन और अन्य लोगों को प्रिफेक्चर कार्यालय में तलब करके इस घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और अमरीकी सेना से कठोर और प्रभावी उपाय करने की मांग की। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव किहारा मिनोरू का कहना है कि अमरीकी सैन्य कर्मियों से जुड़ी घटनाओं से स्थानीय समुदाय बेहद चिंतित है और ये कभी नहीं होनी चाहिए। बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में किहारा ने अमरीकी सेना की उस घोषणा का जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि ओकिनावा में तैनात सभी सैन्य कर्मियों को 48 घंटे के लिए अपनी टुकड़ी की गतिविधियों को रोकना होगा और 1 महीने तक रात के कर्फ्यू का पालन करना होगा। उन्हें लगता है कि यह इस बात का संकेत है कि अमरीकी सेना घटना को गंभीरता से ले रही है और अनुशासन कड़ा करने तथा पुनरावृत्ति रोकने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। किहारा ने कहा कि वे जानते हैं कि अमरीकी पक्ष अपनी कार्रवाई दिशा निर्देशों की आगे समीक्षा करेगा। उन्होंने ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने के तरीकों पर निरंतर बातचीत की उम्मीद जताई। गाजा में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू हुए बुधवार को 3 साल हो गए। मानवीय स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है क्योंकि लगभग 1 साल पहले संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद इजरायली सेना लगातार रुक रुक कर हमले कर रही है। गाजा पट्टी में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि लड़ाई शुरू होने के बाद से 74,245 लोग मारे गए हैं, जबकि पिछले साल 10 अक्टूबर से संघर्ष विराम लागू होने के बाद 1,462 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी में 3/4 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लगभग आधी आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही है जहां सर्दियों की बारिश से पहले जल भराव का खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों को अब भी जानलेवा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के एक मुख्य कारोबारी संगठन के प्रमुख का कहना है कि 2025 की तुलना में इस वर्ष कॉरपोरेट कंप्यूटर सिस्टम को एआई की मदद से हैक करने के प्रयासों में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। जापान एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स के अध्यक्ष यामागुची आकियो ने मंगलवार को अपने संबोधन में आईबीएम जापान द्वारा किए गए शोध का हवाला दिया। अपने संबोधन में उन्होंने एसोसिएशन के सदस्यों से अपने सिस्टम में मौजूद कमियों को दूर करने का आग्रह किया है। तेजी से बढ़ते अत्याधुनिक साइबर हमलों के खतरे के बीच जापानी कंपनियों को सूचना सुरक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की तत्काल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम में निवेश करने की भी आवश्यकता है। जापान यूजर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में प्रकाशित एक सर्वेक्षण ने सूचना सुरक्षा से परिचित कर्मचारियों की गंभीर कमी का संकेत दिया। 100 अरब येन यानी लगभग 63 करोड़ डॉलर का कारोबार करने वाली लगभग 3/4 कंपनियों ने कहा कि उनके पास साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्षों में 10 उद्योगों से संबंधित 950 से अधिक व्यवसायों की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। सर्वेक्षण में ये भी सामने आया कि मार्च में समाप्त हुए 12 महीनों में 7.1% कंपनियों को वायरस वाली ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। इंटरनेट सेवाओं में अनाधिकृत लॉगिन करने से 6.5% कंपनियां प्रभावित हुईं, जबकि 5.2% रैंसमवेयर हमलों की चपेट में आईं। इस बीच हैकिंग की घटनाएं रिपोर्ट करने वाली जापानी कंपनियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सुजुकी मोटर का कहना है कि उसकी पहली इलेक्ट्रिक मिनी कार नवंबर के मध्य में जापान में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। जापान की इस सबसे बड़ी मिनी वाहन निर्माता कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में प्रवेश से इस वर्ग में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है। जापान की वाहन निर्माता कंपनी का कहना है कि ई स्काई मॉडल एक बार चार्ज करने पर 310 किलोमीटर तक चल सकता है। कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक मिनी वाहन के लिए ये दूरी अपेक्षाकृत अधिक है। कर और सरकारी सब्सिडी सहित इनकी कीमतें लगभग 15.5 लाख येन यानी लगभग 9,800 डॉलर से शुरू होगी। सुजुकी का कहना है कि उसका लक्ष्य प्रति माह 1,000 गाड़ियां बेचना है। अध्यक्ष सुजुकी तोशीहिरो ने कहा, हम मिनी वाहनों के व्यापक विकल्प पेश करने के लिए काम करेंगे ताकि उन ग्राहकों तक पहुंचा जा सके जो पेट्रोल कार की बजाय ईवी वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं। जापान की प्रतिद्वंद्वी कंपनियां निस्सान, होंडा और मित्सुबिशी, साथ ही चीन की बीवाईडी पहले ही मिनी ईवी की बिक्री शुरू कर चुकी हैं। सितंबर तक के 9 महीनों में जापान में बिकने वाली सभी मिनी कारों में मिनी ईवी की हिस्सेदारी केवल 1.5% के आसपास थी। इसका कारण यह है कि ये पेट्रोल मॉडल की तुलना में अधिक महंगी है और उपलब्ध मॉडलों की रेंज सीमित है।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 32वें पाठ में आप कहीं जाने का तरीका पूछना सीखेंगे।
1: हारुसान हाउस का निवासी काइतो और उसका निंजा प्रेमी अमरीकी दोस्त माइक हाईवे बस लेकर मिए प्रिफेक्चर के उएनोशी स्टेशन पहुंच गए हैं। पास में किराए के कपड़ों की दुकान है जहां से माइक ने निंजा की पोशाक ली है और उसे पहनकर तैयार हो गया है। अब दोनों निंजा संग्रहालय की ओर जा रहे हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 32वें पाठ की बातचीत।
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あのすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले काइतो ने माइक की पोशाक की तारीफ की।
2: माइक नियाओ ने।
0: माइक जच रहे हो।
2: काकोई।
0: रौबदार।
1: माइक ने जवाब दिया।
3: उरेशी ना।
0: दिल खुश हो गया।
1: उसके बाद माइक ने पास से गुजरते एक आदमी से पूछा।
3: अरो सुमिमासेन।
0: माफ कीजिए।
3: निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का।
0: निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं?
1: आदमी ने उत्तर दिया।
2: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
0: इस सड़क पर सीधे चले जाइए।
2: हकुबत्सुकान वा हिदारी नी अरिमासु।
0: संग्रहालय बाई तरफ है।
1: फिर माइक ने कहा।
3: वाकरिमाश्ता।
0: समझ गए।
3: अरिगातो गोजाइमासु।
0: धन्यवाद।
1: इसके बाद काइतो ने माइक से कहा।
2: सा इको।
0: तो चलो।
1: संग्रहालय ज्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से पैदल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और इस क्षेत्र में निंजा की पोशाक किराए पर लेने की बहुत सारी दुकानें हैं।
0: आज का मुख्य वाक्य है
3: निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का,
0: यानी निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं। ये वाक्य याद करके आप कहीं जाने का तरीका पूछ सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: निंजा हकुबत्सुकान
1: का अर्थ है निंजा संग्रहालय।
4: मादे
1: एक कारक है जिसका मतलब है तक, और
4: दो इत्तारा ई देसु
1: का अर्थ है कैसे जा सकते हैं।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं जाने का तरीका पूछने के लिए पहले उस जगह का नाम बोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं कारक
4: मादे
0: और उसके बाद कहते हैं
4: दो इत्तारा ई देसु का। इत्तारा
1: है क्रिया
4: इकु,
1: यानी जाना का वो रूप जिससे आप ये बोल सकते हैं कि एक काम के होने पर दूसरा काम होगा। इस वाक्य को पूरा एक साथ याद कर लीजिए।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं।
4: दो इत्तारा ई देसु का निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का। निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक क्योतो स्टेशन के सामने बस स्टॉप पर खड़ा है और कहीं जाने का तरीका पूछ रहा है।
5: あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा।
5: あの、すみません。
0: माफ कीजिए।
1: शायद आपको याद होगा कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। आदमी ने आगे कहा।
5: किंकाकुजी मादे दो इत्तारा ई देसु का।
0: किंकाकुजी मंदिर तक कैसे जा सकते हैं?
1: इसमें
4: किंकाकुजी
1: है किंकाकुजी मंदिर, जहां वो जाना चाहता है। इसके बाद दूसरे आदमी ने जवाब दिया,
6: 101 बान नो बस नी नोत्ते कुदासाई,
0: बस नंबर 101 ले लीजिए।
1: इसमें
4: 101 बान
1: का अर्थ है 101 नंबर,
4: बस
1: का अर्थ है बस और
4: नोत्ते
1: है क्रिया
4: नोरु
1: यानी चढ़ना का ते रूप, इसलिए
4: नोत्ते कुदासाई
1: का मतलब है चढ़िए।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？あの、すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको अपने होटल लौटने का रास्ता समझ नहीं आ रहा और आप नक्शा दिखाते हुए रास्ता पूछ रहे हैं। ये होटल के लिए जापानी भाषा में कहेंगे
4: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
1: तो
4: अनो सुमिमासेन
1: से शुरू करके वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: अब बारी है कुछ संबंधित शब्द सीखने की। आज हम कुछ दिशाओं के जापानी शब्द सीखेंगे। दाएं को कहते हैं
4: मिगी
0: और बाएं को
4: हिदारी।
0: सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: मिगी मिगी हिदारी हिदारी।
1: सीधा का जापानी शब्द है
4: मस्सुग,
1: इसका भी अभ्यास कर लीजिए।
4: मस्सुग मस्सुग।
0: तो सीधे चले जाइए को जापानी में कहेंगे
4: मस्सुगु इत्ते कुदासाई।
1: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: माइक निहाओ ने, かっこいい。
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったら

0: आज हम बता रहे हैं जापान की हाईवे बसों के बारे में।
1: हाईवे बसों से आप सीधे कई जगह जा सकते हैं। रात्रि बस लेने से समय भी बचता है क्योंकि आप सोते सोते पहुंच जाते हैं।
0: टोक्यो से हाईवे बस में नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे मुख्य शहरों के अलावा फुजी पर्वत, हाकोने और कोसात्सु ओनसेन जाना भी लोकप्रिय है।
1: बस की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं और कई सेवाओं में तो सीट भी चुन सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में काइतो निंजा के शुरिकेन हथियार से निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए
1: सायोनारा।
2: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 7 अक्टूबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। जापानी वैज्ञानिक सोआई केन्सो इस वर्ष के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के 2 विजेताओं में से एक हैं। उन्हें ये सम्मान असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटोकैटालिसिस की खोज के लिए दिया गया है। जापान के दक्षिणी प्रिफेक्चर ओकिनावा में हत्या और लूटपाट के संदेह में एक मरीन सैनिक की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी सेना को 48 घंटे के लिए सभी गतिविधियां रोकने और 1 महीने तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। अमेरिकी मरीन कोर के 20 वर्षीय लांस कॉर्पोरल डेविन जेकब बेलार्ड पर शनिवार को नाहा शहर के एक होटल में 39 वर्षीय स्थानीय महिला की हत्या कर उसका बटुआ और अन्य सामान लूटने का आरोप है। मरीन कोर के फुतेम्मा एयर स्टेशन में तैनात बेलार्ड को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। ओकिनावा क्षेत्र संयोजक और तृतीय मरीन अभियान बल के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन वॉटसन ने मंगलवार देर रात मानक और अनुशासन नोटिस जारी किया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने ओकिनावे में तैनात सभी अमरीकी सैन्य कर्मियों को बुधवार दोपहर 12 बजे से 48 घंटे के लिए यूनिट संचालन रोकने का निर्देश दिया। इस अवधि के दौरान निजी काम के लिए सैन्य अड्डे से बाहर जाना और मदिरा सेवन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त सेवा कर्मियों को शुक्रवार से शुरू होने वाले 30 दिनों तक मध्य रात्रि से सुबह 5 बजे तक घर पर रहना होगा। ओकिनावा के गवर्नर कोजा गेंता ने सोमवार को वॉटसन और अन्य लोगों को प्रिफेक्चर कार्यालय में तलब करके इस घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और अमरीकी सेना से कठोर और प्रभावी उपाय करने की मांग की। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव किहारा मिनोरू का कहना है कि अमरीकी सैन्य कर्मियों से जुड़ी घटनाओं से स्थानीय समुदाय बेहद चिंतित है और ये कभी नहीं होनी चाहिए।

बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में किहारा ने अमरीकी सेना की उस घोषणा का जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि ओकिनावा में तैनात सभी सैन्य कर्मियों को 48 घंटे के लिए अपनी टुकड़ी की गतिविधियों को रोकना होगा और एक महीने तक रात के कर्फ्यू का पालन करना होगा। उन्हें लगता है कि यह इस बात का संकेत है कि अमेरिकी सेना घटना को गंभीरता से ले रही है और अनुशासन कड़ा करने तथा पुनरावृत्ति रोकने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। किहारा ने कहा कि वे जानते हैं कि अमेरिकी पक्ष अपनी कार्रवाई दिशा निर्देशों की आगे समीक्षा करेगा। उन्होंने ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने के तरीकों पर निरंतर बातचीत की उम्मीद जताई। गाजा में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू हुए बुधवार को 3 साल हो गए। मानवीय स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है क्योंकि लगभग 1 साल पहले संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद इजरायली सेना लगातार रुक रुक कर हमले कर रही है। गाजा पट्टी में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि लड़ाई शुरू होने के बाद से 74,245 लोग मारे गए हैं, जबकि पिछले साल 10 अक्टूबर से संघर्ष विराम लागू होने के बाद 1,465 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी में 3/4 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लगभग आधी आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही है जहां सर्दियों की बारिश से पहले जल भराव का खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों को अब भी जानलेवा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के एक मुख्य कारोबारी संगठन के प्रमुख का कहना है कि 2025 की तुलना में इस वर्ष कॉरपोरेट कंप्यूटर सिस्टम को एआई की मदद से हैक करने के प्रयासों में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। जापान एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स के अध्यक्ष यामागुची आकियो ने मंगलवार को अपने संबोधन में आईबीएम जापान द्वारा किए गए शोध का हवाला दिया। अपने संबोधन में उन्होंने एसोसिएशन के सदस्यों से अपने सिस्टम में मौजूद कमियों को दूर करने का आग्रह किया है। तेजी से बढ़ते अत्याधुनिक साइबर हमलों के खतरे के बीच जापानी कंपनियों को सूचना सुरक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की तत्काल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम में निवेश करने की भी आवश्यकता है। जापान यूजर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में प्रकाशित एक सर्वेक्षण ने सूचना सुरक्षा से परिचित कर्मचारियों की गंभीर कमी का संकेत दिया। 100 अरब येन यानी लगभग 63 करोड़ डॉलर का कारोबार करने वाली लगभग 3/4 कंपनियों ने कहा कि उनके पास साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्षों में 10 उद्योगों से संबंधित 950 से अधिक व्यवसायों की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। सर्वेक्षण में ये भी सामने आया कि मार्च में समाप्त हुए 12 महीनों में 7.1% कंपनियों को वायरस वाली ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। इंटरनेट सेवाओं में अनाधिकृत लॉगिन करने से 6.5% कंपनियां प्रभावित हुईं, जबकि 5.2% रैंसमवेयर हमलों की चपेट में आईं। इस बीच हैकिंग की घटनाएं रिपोर्ट करने वाली जापानी कंपनियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सुजुकी मोटर का कहना है कि उसकी पहली इलेक्ट्रिक मिनी कार नवंबर के मध्य में जापान में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। जापान की इस सबसे बड़ी मिनी वाहन निर्माता कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में प्रवेश से इस वर्ग में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है। जापान की वाहन निर्माता कंपनी का कहना है कि ई स्काई मॉडल एक बार चार्ज करने पर 310 किलोमीटर तक चल सकता है। कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक मिनी वाहन के लिए ये दूरी अपेक्षाकृत अधिक है। कर और सरकारी सब्सिडी सहित इनकी कीमतें लगभग 15.5 लाख येन यानी लगभग 9,800 डॉलर से शुरू होगी। सुजुकी का कहना है कि उसका लक्ष्य प्रति माह 1,000 गाड़ियां बेचना है। अध्यक्ष सुजुकी तोशीहिरो ने कहा, हम मिनी वाहनों के व्यापक विकल्प पेश करने के लिए काम करेंगे ताकि उन ग्राहकों तक पहुंचा जा सके जो पेट्रोल कार की बजाय ईवी वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं। जापान की प्रतिद्वंद्वी कंपनियां निस्सान, होंडा और मित्सुबिशी साथ ही चीन की बीवाईडी पहले ही मिनी ईवी की बिक्री शुरू कर चुकी हैं। सितंबर तक के 9 महीनों में जापान में बिकने वाली सभी मिनी कारों में मिनी ईवी की हिस्सेदारी केवल 1.5% के आसपास थी। इसका कारण ये है कि ये पेट्रोल मॉडल की तुलना में अधिक महंगी है और उपलब्ध मॉडलों की रेंज सीमित है।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 32वें पाठ में आप कहीं जाने का तरीका पूछना सीखेंगे।
1: हारुसान हाउस का निवासी काइतो और उसका निंजा प्रेमी अमरीकी दोस्त माइक हाईवे बस लेकर मिए प्रिफेक्चर के उएनोशी स्टेशन पहुंच गए हैं। पास में किराए के कपड़ों की दुकान है जहां से माइक ने निंजा की पोशाक ली है और उसे पहनकर तैयार हो गया है। अब दोनों निंजा संग्रहालय की ओर जा रहे हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 32वें पाठ की बातचीत।
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あのすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले काइतो ने माइक की पोशाक की तारीफ की।
2: माइक नियाओ ने।
0: माइक जच रहे हो।
2: काकोई।
0: रौबदार।
1: माइक ने जवाब दिया।
3: उरेशी ना।
0: दिल खुश हो गया।
1: उसके बाद माइक ने पास से गुजरते एक आदमी से पूछा।
3: अरो सुमिमासेन।
0: माफ कीजिए।
3: निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का।
0: निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं?
1: आदमी ने उत्तर दिया।
2: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
0: इस सड़क पर सीधे चले जाइए।
2: हकुबत्सुकान वा हिदारी नी अरिमासु।
0: संग्रहालय बाई तरफ है।
1: फिर माइक ने कहा।
3: वाकरिमाशिता।
0: समझ गए।
3: अरिगातो गोजाइमासु।
0: धन्यवाद।
1: इसके बाद काइतो ने माइक से कहा।
2: सा इको।
0: तो चलो।
1: संग्रहालय ज्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से पैदल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और इस क्षेत्र में निंजा की पोशाक किराए पर लेने की बहुत सारी दुकानें हैं।
0: आज का मुख्य वाक्य है
3: निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का,
0: यानी निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं। ये वाक्य याद करके आप कहीं जाने का तरीका पूछ सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: निंजा हकुबत्सुकान
1: का अर्थ है निंजा संग्रहालय।
4: मादे
1: एक कारक है जिसका मतलब है तक, और
4: दो इत्तारा ई देसु
1: का अर्थ है कैसे जा सकते हैं।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं जाने का तरीका पूछने के लिए पहले उस जगह का नाम बोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं कारक
4: मादे
0: और उसके बाद कहते हैं
4: दो इत्तारा ई देसु का। इत्तारा
1: है क्रिया
4: इकु,
1: यानी जाना का वो रूप जिससे आप ये बोल सकते हैं कि एक काम के होने पर दूसरा काम होगा। इस वाक्य को पूरा एक साथ याद कर लीजिए।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं।
4: दो इत्तारा ई देसु का निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का। निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक क्योतो स्टेशन के सामने बस स्टॉप पर खड़ा है और कहीं जाने का तरीका पूछ रहा है।
5: अनो सुमिमासेन। किनकाकुजी मादे दो इत्तारा ई देसु का? 101 बान नो बस नी नोत्ते कुदासाई।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा।
5: अनो सुमिमासेन।
0: माफ कीजिए।
1: शायद आपको याद होगा कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। आदमी ने आगे कहा।
5: किंकाकुजी मादे दो इत्तारा ई देसु का?
0: किंकाकुजी मंदिर तक कैसे जा सकते हैं?
1: इसमें
4: किंकाकुजी
1: है किंकाकुजी मंदिर, जहां वो जाना चाहता है। इसके बाद दूसरे आदमी ने जवाब दिया,
6: 101 बान नो बस नी नोत्ते कुदासाई,
0: बस नंबर 101 ले लीजिए।
1: इसमें
4: 101 बान
1: का अर्थ है 101 नंबर,
4: बस
1: का अर्थ है बस और
4: नोत्ते
1: है क्रिया
4: नोरु
1: यानी चढ़ना का ते रूप, इसलिए
4: नोत्ते कुदासाई
1: का मतलब है चढ़िए।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？あの、すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको अपने होटल लौटने का रास्ता समझ नहीं आ रहा और आप नक्शा दिखाते हुए रास्ता पूछ रहे हैं। ये होटल के लिए जापानी भाषा में कहेंगे
4: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
1: तो
4: अनो सुमिमासेन
1: से शुरू करके वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: अब बारी है कुछ संबंधित शब्द सीखने की। आज हम कुछ दिशाओं के जापानी शब्द सीखेंगे। दाएं को कहते हैं
4: मिगी
0: और बाएं को
4: हिदारी।
0: सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: मिगी मिगी हिदारी हिदारी।
1: सीधा का जापानी शब्द है
4: मास्सुगु।
1: इसका भी अभ्यास कर लीजिए।
4: मास्सुगु मास्सुगु।
0: तो सीधे चले जाइए को जापानी में कहेंगे
4: मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
1: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: माइक नियाउ ने, かっこいい。
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
4: トラベルガイド।
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। आज के पाठ में माइक और काइतो हाईवे बस लेकर मिए प्रेफेक्चर गए थे। ये बसें समय जरूर लगाती हैं, लेकिन जेब पर हल्की होती हैं।

0: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में काइतो निंजा के शुरिकेन हथियार से निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए
0: सायोनारा।
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

ये NHK World जापान की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात आप शॉर्ट वेव्स, सेटेलाइट और इंटरनेट पर सुन सकते हैं। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। जापान की एक बड़ी तिजारती तंजीम के सरबराह का कहना है कि इस साल एआई की मदद से कारोबारी कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करने की कोशिशों में 2025 के मुकाबले में 50% से ज्यादा इजाफा हुआ है। जापानी तंजीम ब्राय कारोबारी सरबराहान के चेयरपर्सन यामागुची आकियो ने मंगल के रोज अपने बयान में आईबीएम जापान की तहकीक का हवाला दिया। उनका कहना था कि उन्होंने तंजीम के अराकीन पर जोर दिया है कि वो अपने निजाम में मौजूद कमजोरियों को दूर करें। जापानी कंपनियों को जदीद तरीन साइबर हमलों के तेजी से बढ़ते हुए खतरे के दरमियान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्करों को तरबियत देने के फौरी चैलेंज का सामना है। ये उन इकदाम के अलावा है जो सिस्टमों में सरमायाकारी के लिए दरकार हैं। जापान यूजर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की जानिब से कबल ज़ीन रवां साल शाया होने वाले एक सर्वे में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से वाकिफ कारकुनों की शदीद कमी की निशानदेही की गई थी। कम अज कम 100 बिलियन येन या तकरीबन 630 मिलियन डॉलर सालाना फरोख्त करने वाले कारोबारी इदारों के तकरीबन 3/4 ने कहा कि उनके पास साइबर सिक्योरिटी के मसाइल से निपटने के लिए अमला काफी नहीं है। सर्वे के नतज 10 सनतों पर मुहित 950 से ज्यादा कारोबारी इदारों के जवाब की अक्कासी करते हैं। सर्वे ने यह भी जाहिर किया कि मार्च में खत्म होने वाले 12 महीनों में 7.1% कंपनियों को वायरस ज़दा ईमेल अटैचमेंट के जरिए साइबर हमलों का निशाना बनाया गया। इंटरनेट सर्विसेज पर गैर मजाज लॉग इन ने 6.5% कंपनियों को मुतासर किया, जबकि 5.2% रैंसम वेयर हमलों का शिकार हुई। डीएसटा हैकिंग के वाकयात की इतला देने वाली जापानी कंपनियों की तादाद में भी तसलसल के साथ इजाफा हो रहा है। सुजुकी मोटर का कहना है कि उसकी पहली छोटी बरकी गाड़ी जापान में नवंबर के वस्त में फरोख्त के लिए पेश की जाएगी। छोटी गाड़ियां बनाने वाली जापान की इस सबसे बड़ी कंपनी के ईवी फील्ड में दाखिले से इस शोबे में मुसाबिकत मजीद तेज होने की उम्मीद है। इस जापानी गाड़ी साज कंपनी का कहना है कि ई स्काई मॉडल की ये गाड़ी एक दफा चार्ज होने पर 310 किलोमीटर सफर कर सकती है। उसका कहना है कि एक छोटी बरकी गाड़ी के लिए यह निस्बतन तवील रेंज है। कीमतें तकरीबन 1.55 मिलियन येन या तकरीबन 9,800 डॉलर से शुरू होंगी, जिनमें टैक्स और हुकूमती सब्सिडी शामिल हैं। सुजुकी का कहना है कि उसका हदफ एक माह में 1,000 गाड़ियों की फरोख्त है। सुजुकी के सदर सुजुकी तोशिहिरो ने कहा, हम छोटी गाड़ियों के वसी ऑप्शन पेश करने के लिए काम करेंगे जो ऐसे सार्फिन को तजवीज की जा सकती हैं जो पेट्रोल गाड़ियों से मुंतकिल होने के बारे में सोच रहे हैं। हरीफ जापानी कंपनियों निसान, होंडा और मित्सुबिशी के साथ साथ चीन की BYD ने पहले ही छोटी बरकी गाड़ियों की फरोख्त शुरू कर रखी है। सितंबर तक के 9 महीनों में जापान में फरोख्त होने वाली तमाम छोटी गाड़ियों में मिनी ईवी गाड़ियों का हिस्सा सिर्फ 1.5% था। इसकी वजह पेट्रोल मॉडलों के मुकाबले में उनकी ज्यादा कीमत और दस्तयाब मॉडलों की इकसाम का महदूद होना है।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तजियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: अब कुछ दूसरे मकामात के नामों के साथ मशक करें। फर्ज करें आप जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसका रास्ता भूल गए। आप किसी को नक्शे में अपने होटल के मकाम पर उंगली रखकर दिखाते हुए पूछना चाहते हैं कि इस होटल तक कैसे जाएंगे। इस होटल की जापानी है
0: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
1: बात का आगाज आनो सुमिमासेन से करें।
2: आनो सुमिमासेन, कोनो होटेल मादे दो इत्तारा ई देस्का? すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
1: अब फर्ज करें आप क्योटो स्टेशन पर हैं और शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं। शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म को कहते हैं
0: शिंकानसेन नो होम, शिंकानसेन नो होम।
1: तो सामीन कोशिश करें।
3: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
4: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
1: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम आपको दाएं बाएं वगैरह के बारे में बता रहे हैं। दाएं को कहते हैं मिगी और बाएं को हिदारी।
4: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
0: मिगी, हिदारी।
1: सीधा जाने को कहते हैं मस्सुगु। इसे भी दोहराकर मश्क करें।
0: मस्सुगु।
1: अगर किसी से कहना हो कि सीधा जाएं, तो कहेंगे मस्सुगु इत्ते कुदासाई। और अगर दाएं मोड़ने का कहना हो तो फेल मगारू यानी मोड़ना इस्तेमाल करते हुए यूं कहेंगे मिगी नी मगाते कुदासाई।
4: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खास ध्यान दें जिसमें माइक रास्ता पूछता है।
5: माइक नियाउ ने, काक्कोई।
6: उरेशी ना। सुमिमासेन, निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का?
5: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
6: わかりました。ありがとうございます。
5: さあ、行こう。
0: ミーヤーのトラベルガイド。
4: अब मिया का सफरी हिदायतनामा। काइतो और माइक ने मिए प्रीफेक्चर जाने के लिए हाईवे बस इस्तेमाल की थी। बस के जरिए सफर में कुछ वक्त लगता है, लेकिन ये सफर का सस्ता जरिया है। तो आज का मौजू है जापान की हाईवे बसें।
1: हाईवे बसों के जरिए कई मकबूल मकामात तक बराह रास्त जाया जा सकता है। अगर रात की बस से सफर किया जाए तो सोते हुए सफर करने के बायस वक्त बचाया जा सकता है।
4: ये बसें ज्यादातर किन मकामात के लिए दस्तयाब हैं?
1: हाईवे बसों के कई रूट हैं। टोक्यो से नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे बड़े शहरों के रूट मकबूल हैं। इसके अलावा कोहे फूजी, हाकोने और कुसात्सु ओनसेन गर्म चश्मा जाने वाले रूट भी हैं।
4: इनकी सीट की बुकिंग किस तरह होती है?
1: इंटरनेट वगैरह के जरिए टिकट आसानी से खरीदा जा सकता है। बाज बसों में सीट नंबर तक भी तय किया जा सकता है। लग्जरी बसें कुछ महंगी होती हैं, लेकिन उनमें पांव फैलाने की जगह या अलग कमरे जैसी नशिस्तें दस्तियाब होने के बायस सफर ज्यादा आरामदेह हो जाता है।
4: यानी जापान में मुख्तलिफ इलाकों के सफर के लिए बस एक इंतखाब हो सकता है। अगले सबक में काइतो शुरी के निंजा स्टार फेंकने की कोशिश करता है।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 7 अक्टूबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला चैन और वायला खवानों से सुने समाचार। जापानी वैज्ञानिक सोआई केन्सो इस वर्ष के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के 2 विजेताओं में से एक हैं। उन्हें ये सम्मान असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटोकैटालिसिस की खोज के लिए दिया गया है। जापान के दक्षिणी प्रिफेक्चर ओकिनावा में हत्या और लूटपाट के संदेह में एक मरीन सैनिक की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी सेना को 48 घंटे के लिए सभी गतिविधियां रोकने और 1 महीने तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। अमेरिकी मरीन कोर के 20 वर्षीय लांस कॉर्पोरल डेविन जेकब बेलार्ड पर शनिवार को नाहा शहर के एक होटल में 39 वर्षीय स्थानीय महिला की हत्या कर उसका बटुआ और अन्य सामान लूटने का आरोप है। मरीन कोर के फुतेम्मा एयर स्टेशन में तैनात बेलार्ड को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। ओकिनावा क्षेत्र संयोजक और तृतीय मरीन अभियान बल के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन वॉटसन ने मंगलवार देर रात मानक और अनुशासन नोटिस जारी किया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने ओकिनावा में तैनात सभी अमरीकी सैन्य कर्मियों को बुधवार दोपहर 12 बजे से 48 घंटे के लिए यूनिट संचालन रोकने का निर्देश दिया। इस अवधि के दौरान निजी काम के लिए सैन्य अड्डे से बाहर जाना और मदिरा सेवन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त सेवा कर्मियों को शुक्रवार से शुरू होने वाले 30 दिनों तक मध्य रात्रि से सुबह 5 बजे तक घर पर रहना होगा। ओकिनावा के गवर्नर कोजा गेंता ने सोमवार को वॉटसन और अन्य लोगों को प्रिफेक्चर कार्यालय में तलब करके इस घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और अमेरिकी सेना से कठोर और प्रभावी उपाय करने की मांग की। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव किहारा मिनोरू का कहना है कि अमेरिकी सैन्य कर्मियों से जुड़ी घटनाओं से स्थानीय समुदाय बेहद चिंतित है और ये कभी नहीं होनी चाहिए। बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में किहारा ने अमेरिकी सेना की उस घोषणा का जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि ओकिनावा में तैनात सभी सैन्य कर्मियों को 48 घंटे के लिए अपनी टुकड़ी की गतिविधियों को रोकना होगा और 1 महीने तक रात के कर्फ्यू का पालन करना होगा। उन्हें लगता है कि यह इस बात का संकेत है कि अमेरिकी सेना घटना को गंभीरता से ले रही है और अनुशासन कड़ा करने तथा पुनरावृत्ति रोकने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। किहारा ने कहा कि वे जानते हैं कि अमेरिकी पक्ष अपनी कार्रवाई दिशा निर्देशों की आगे समीक्षा करेगा। उन्होंने ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने के तरीकों पर निरंतर बातचीत की उम्मीद जताई। गाजा में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू हुए बुधवार को 3 साल हो गए। मानवीय स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है क्योंकि लगभग 1 साल पहले संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद इजरायली सेना लगातार रुक रुक कर हमले कर रही है। गाजा पट्टी में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि लड़ाई शुरू होने के बाद से 74,245 लोग मारे गए हैं, जबकि पिछले साल 10 अक्टूबर से संघर्ष विराम लागू होने के बाद 1,462 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी में 3/4 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लगभग आधी आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही है जहां सर्दियों की बारिश से पहले जल भराव का खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों को अब भी जानलेवा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के एक मुख्य कारोबारी संगठन के प्रमुख का कहना है कि 2025 की तुलना में इस वर्ष कॉरपोरेट कंप्यूटर सिस्टम को एआई की मदद से हैक करने के प्रयासों में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। जापान एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स के अध्यक्ष यामागुची आकियो ने मंगलवार को अपने संबोधन में आईबीएम जापान द्वारा किए गए शोध का हवाला दिया। अपने संबोधन में उन्होंने एसोसिएशन के सदस्यों से अपने सिस्टम में मौजूद कमियों को दूर करने का आग्रह किया है। तेजी से बढ़ते अत्याधुनिक साइबर हमलों के खतरे के बीच जापानी कंपनियों को सूचना सुरक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की तत्काल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम में निवेश करने की भी आवश्यकता है। जापान यूजर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में प्रकाशित एक सर्वेक्षण ने सूचना सुरक्षा से परिचित कर्मचारियों की गंभीर कमी का संकेत दिया। 100 अरब येन यानी लगभग 63 करोड़ डॉलर का कारोबार करने वाली लगभग 3/4 कंपनियों ने कहा कि उनके पास साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों में 10 उद्योगों से संबंधित 950 से अधिक व्यवसायों की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। सर्वेक्षण में ये भी सामने आया कि मार्च में समाप्त हुए 12 महीनों में 7.1% कंपनियों को वायरस वाली ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। इंटरनेट सेवाओं में अनाधिकृत लॉगिन करने से 6.5% कंपनियां प्रभावित हुई, जबकि 5.2% रैंसमवेयर हमलों की चपेट में आई। इस बीच हैकिंग की घटनाएं रिपोर्ट करने वाली जापानी कंपनियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सुजुकी मोटर का कहना है कि उसकी पहली इलेक्ट्रिक मिनी कार नवंबर के मध्य में जापान में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। जापान की इस सबसे बड़ी मिनी वाहन निर्माता कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में प्रवेश से इस वर्ग में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है। जापान की वाहन निर्माता कंपनी का कहना है कि ई स्काई मॉडल एक बार चार्ज करने पर 310 किलोमीटर तक चल सकता है। कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक मिनी वाहन के लिए ये दूरी अपेक्षाकृत अधिक है। कर और सरकारी सब्सिडी सहित इनकी कीमतें लगभग 15.5 लाख येन यानी लगभग 9,800 डॉलर से शुरू होगी। सुजुकी का कहना है कि उसका लक्ष्य प्रति माह 1,000 गाड़ियां बेचना है। अध्यक्ष सुजुकी तोशीहिरो ने कहा, हम मिनी वाहनों के व्यापक विकल्प पेश करने के लिए काम करेंगे ताकि उन ग्राहकों तक पहुंचा जा सके जो पेट्रोल कार की बजाय ईवी वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं। जापान की प्रतिद्वंद्वी कंपनियां निस्सान, होंडा और मित्सुबिशी साथ ही चीन की बीवाईडी पहले ही मिनी ईवी की बिक्री शुरू कर चुकी हैं। सितंबर तक के 9 महीनों में जापान में बिकने वाली सभी मिनी कारों में मिनी ईवी की हिस्सेदारी केवल 1.5% के आसपास थी। इसका कारण ये है कि ये पेट्रोल मॉडल की तुलना में अधिक महंगी है और उपलब्ध मॉडलों की रेंज सीमित है।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 32वें पाठ में आप कहीं जाने का तरीका पूछना सीखेंगे।
1: हारुसान हाउस का निवासी काइतो और उसका निंजा प्रेमी अमरीकी दोस्त माइक हाईवे बस लेकर मिए प्रिफेक्चर के उएनोशी स्टेशन पहुंच गए हैं। पास में किराए के कपड़ों की दुकान है जहां से माइक ने निंजा की पोशाक ली है और उसे पहनकर तैयार हो गया है। अब दोनों निंजा संग्रहालय की ओर जा रहे हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 32वें पाठ की बातचीत।
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले काइतो ने माइक की पोशाक की तारीफ की।
2: माइक नियाओ ने।
0: माइक जच रहे हो।
2: काकोई।
0: रौबदार।
1: माइक ने जवाब दिया।
3: उरेशी ना।
0: दिल खुश हो गया।
1: उसके बाद माइक ने पास से गुजरते एक आदमी से पूछा।
3: अरो सुमिमासेन।
0: माफ कीजिए।
3: निंजा हकबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का?
0: निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं?
1: आदमी ने उत्तर दिया।
2: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
0: इस सड़क पर सीधे चले जाइए।
2: हकुबुत्सुकान वा हिदारी नी अरिमास।
0: संग्रहालय बाईं तरफ है।
1: फिर माइक ने कहा।
3: वाकरिमास्ता।
0: समझ गए।
3: अरिगातो गोजाइमास।
0: धन्यवाद।
1: इसके बाद काइतो ने माइक से कहा।
2: सा इको।
0: तो चलो।
1: संग्रहालय ज्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से पैदल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और इस क्षेत्र में निंजा की पोशाक किराए पर लेने की बहुत सारी दुकानें हैं।
0: आज का मुख्य वाक्य है
3: निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का?
0: यानी निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं। ये वाक्य याद करके आप कहीं जाने का तरीका पूछ सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: निंजा हकुबुत्सुकान
1: का अर्थ है निंजा संग्रहालय।
4: मादे
1: एक कारक है जिसका मतलब है तक, और
4: दो इत्तारा ई देसु
1: का अर्थ है कैसे जा सकते हैं।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं जाने का तरीका पूछने के लिए पहले उस जगह का नाम बोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं कारक
4: मादे,
0: और उसके बाद कहते हैं
4: दो इत्तारा ई देसु का। इत्तारा
1: है क्रिया
4: इक
1: यानी जाना का वो रूप जिससे आप ये बोल सकते हैं कि एक काम के होने पर दूसरा काम होगा। इस वाक्य को पूरा एक साथ याद कर लीजिए।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं।
4: दो इत्तारा ई देसु का निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का। निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक क्योतो स्टेशन के सामने बस स्टॉप पर खड़ा है और कहीं जाने का तरीका पूछ रहा है।
5: すみません。 金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番 のバスに乗ってください。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा।
5: すみません。
0: माफ कीजिए।
1: शायद आपको याद होगा कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। आदमी ने आगे कहा।
5: किंकाकुजी मादे दो इत्तारा ई देसु का?
0: किंकाकुजी मंदिर तक कैसे जा सकते हैं?
1: इसमें
4: किंकाकुजी
1: है किंकाकुजी मंदिर जहां वो जाना चाहता है। इसके बाद दूसरे आदमी ने जवाब दिया,
6: 101 番のバスに乗ってください。
0: बस नंबर 101 ले लीजिए।
1: इसमें
4: 101 番
1: का अर्थ है 101 नंबर।
4: बस
1: का अर्थ है बस और
4: 乗って
1: है क्रिया
4: 乗る
1: यानी चढ़ना का ते रूप। इसलिए
4: 乗ってください
1: का मतलब है चढ़िए।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: どう言ったらいいですか?金閣寺までどう行ったらいいですか?すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか?
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको अपने होटल लौटने का रास्ता समझ नहीं आ रहा और आप नक्शा दिखाते हुए रास्ता पूछ रहे हैं। ये होटल के लिए जापानी भाषा में कहेंगे
4: कोनो होटेरु, कोनो होटेरु।
1: तो
4: अनो सुमिमासेन
1: से शुरू करके वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
0: अब बारी है कुछ संबंधित शब्द सीखने की। आज हम कुछ दिशाओं के जापानी शब्द सीखेंगे। दाएं को कहते हैं
4: मिगी
0: और बाएं को
4: हिदारी।
0: सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: मिगी मिगी हिदारी हिदारी।
1: सीधा का जापानी शब्द है
4: मस्सुगु।
1: इसका भी अभ्यास कर लीजिए।
4: मस्सुगु मस्सुगु।
0: तो सीधे चले जाइए को जापानी में कहेंगे
4: मस्सुगु इत्ते कुदासाई।
1: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: माइक 似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません、忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました、ありがとうございます。
2: さあ行こう。
4: トラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। आज के पाठ में माइक और काइतो हाईवे बस लेकर मिये प्रेफेक्चर गए थे। ये बसें समय जरूर लगाती हैं, लेकिन जेब पर हल्की होती हैं। इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की हाईवे बसों के बारे में।
1: हाईवे बसों से आप सीधे कई जगह जा सकते हैं। रात्रि बस लेने से समय भी बचता है, क्योंकि आप सोते सोते पहुंच जाते हैं।
0: टोक्यो से हाईवे बस में नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे मुख्य शहरों के अलावा फुजी पर्वत, हाकोने और कोसात्सु ओनसेन जाना भी लोकप्रिय है।
1: बस की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं और कई सेवाओं में तो सीट भी चुन सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में काइतो निंजा के शुरिकेन हथियार से निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए
1: सायोनारा।
8: रेडियो जापान टोक्यो।

0: ये खबरें एनएच के वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। जापान की एक बड़ी तिजारती तंजीम के सरबराह का कहना है कि इस साल एआई की मदद से कारोबारी कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करने की कोशिशों में 2025 के मुकाबले में 50% से ज्यादा इजाफा हुआ है। जापानी तंजीम ब्राय कारोबारी सरबराहान के चेयरपर्सन यामागुची आकियो ने मंगल के रोज अपने बयान में आईबीएम जापान की तहकीक का हवाला दिया। उनका कहना था कि उन्होंने तंजीम के अराकीन पर जोर दिया है कि वो अपने निजाम में मौजूद कमजोरियों को दूर करें। जापानी कंपनियों को जदीद तरीन साइबर हमलों के तेजी से बढ़ते हुए खतरे के दरमियान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्करों को तरबियत देने के फौरी चैलेंज का सामना है। ये उन इकदाम के अलावा है जो सिस्टमों में सरमायाकारी के लिए दरकार हैं। जापान यूजर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की जानिब से कबल ज़ीन रमा साल शाया होने वाले एक सर्वे में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से वाकिफ कारकुनों की शदीद कमी की निशानदेही की गई थी। कम अज कम 100 बिलियन येन या तकरीबन 630 मिलियन डॉलर सालाना फरोख्त करने वाले कारोबारी इदारों के तकरीबन 3/4 ने कहा कि उनके पास साइबर सिक्योरिटी के मसाइल से निपटने के लिए अमला काफी नहीं है। सर्वे के नतज 10 सनतों पर मुहित 950 से ज्यादा कारोबारी इदारों के जवाब की अक्कासी करते हैं। सर्वे ने यह भी जाहिर किया कि मार्च में खत्म होने वाले 12 महीनों में 7.1% कंपनियों को वायरस जदा ईमेल अटैचमेंट के जरिए साइबर हमलों का निशाना बनाया गया। इंटरनेट सर्विसेज पर गैर मजाज लॉग इन ने 6.5% कंपनियों को मुतासर किया, जबकि 5.2% रैंसम वेयर हमलों का शिकार हुई। डीएसटा हैकिंग के वाकयात की इतला देने वाली जापानी कंपनियों की तादाद में भी तसलसल के साथ इजाफा हो रहा है। सुजुकी मोटर का कहना है कि उसकी पहली छोटी बरकी गाड़ी जापान में नवंबर के वस्त में फरोख्त के लिए पेश की जाएगी। छोटी गाड़ियां बनाने वाली जापान की इस सबसे बड़ी कंपनी के ईवी फील्ड में दाखिले से इस शोबे में मुसाबिकत मजीद तेज होने की उम्मीद है। इस जापानी गाड़ी साज कंपनी का कहना है कि ई स्काई मॉडल की ये गाड़ी एक दफा चार्ज होने पर 310 किलोमीटर सफर कर सकती है। उसका कहना है कि एक छोटी बरकी गाड़ी के लिए यह निस्बतन तवील रेंज है। कीमतें तकरीबन 1.55 मिलियन येन या तकरीबन 9,800 डॉलर से शुरू होंगी, जिनमें टैक्स और हुकूमती सब्सिडी शामिल हैं। सुजुकी का कहना है कि उसका हदफ एक माह में 1,000 गाड़ियों की फरोख्त है। सुजुकी के सदर सुजुकी तोशिहिरो ने कहा, हम छोटी गाड़ियों के वसी ऑप्शन पेश करने के लिए काम करेंगे जो ऐसे सार्फिन को तजवीज की जा सकती हैं जो पेट्रोल गाड़ियों से मुंतकिल होने के बारे में सोच रहे हैं। हरीफ जापानी कंपनियों निसान, होंडा और मित्सुबिशी के साथ साथ चीन की BYD ने पहले ही छोटी बरकी गाड़ियों की फरोख्त शुरू कर रखी है। सितंबर तक के 9 महीनों में जापान में फरोख्त होने वाली तमाम छोटी गाड़ियों में मिनी ईवी गाड़ियों का हिस्सा सिर्फ 1.5% था। इसकी वजह पेट्रोल मॉडलों के मुकाबले में उनकी ज्यादा कीमत और दस्तयाब मॉडलों की इकसाम का महदूद होना है।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तजियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।